0: 63056505 9819113627 0655652525
1: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उहिसो सु खन क्या खलो सुजी पिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिबा वेबसाइट हैना URL चेक लना आच्छा वा घटना तल आफै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेरदिल परेमो न्युई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

Willing Go Festivity Offer. अब पाउंड होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छिटो बने गई Willing Go।

बुलबुल बुलबुल बुलबुल एउटा इरानी चरा बुलबुल कम्युनिकेशन को रात्रि प्रस्तुति बुलबुल बुलबुल बुलबुल

0: कहाँ गएछौ? ढिलो भइसक्यो, ड्रेस लगा।
1: ओए सुन्न, आज किरणको
0: वर्षा राउत।
1: वर्षा राउत खोइ कहाँ छ?
0: ऊ त्यहाँ।
2: ओहो।